गुरु प्यारियो, आप जी ने हुने हुने ही गुरबाणी का आनंद माणिया है। असी आप जी का ध्यान एक जरूरी गल वाल दिवाना चाहते हुए बेनती करते हां कि जे आप जी घर विच परिवार विच ते बच्चियां नाल गल बात पंजाबी विच करते हो ता आप तंता जो हो, जे कुछ कसर है ता अज तो इस पासे खास ध्यान दियो। बच्चियां पास पंजाबी विच गल बात करन दा समा केवल घर विच ही है, स्कूल विच, दोस्तां विच, घर दे नौकरां चाकरां नाल ता समा उन्हां नूं मिल ही नहीं सकदा। जरा सोचो, जे बच्चे पंजाबी बोल ते समझ नहीं सकनगे ता गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना ते समझना ता इक पासे रिहा, ओह गुरुद्वारे जाके की लाभ प्राप्त कर सकनगे? गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी नाल संबंध किवें जोड़नगे? अपना जन्म किवें सफल कर सकनगे? हो सकदा है आप जी ने इस पासे कदी ध्यान ना दिता होवे। असी ता उस दाते दा सुनेहा आप पास पहुंचा रहे हां। जे कुछ उनताई है ता ध्यान दियो ते ओ पूरी करो। आप जितनिया वध तो वध जवाना बच्चियां नूं पढ़ाओ अच्छा है, पर पंजाबी ता सिखी दा मुढ अथवा फर्स्ट स्टेप है, सिखी दा तुरा है। एक अंग्रेज मुदब्बर ने ठीक ही ता कहा सी कि जिस कौम नूं कमजोर करना होवे उसकी बोली खो लवो, पर असी ता अपने पैरां ते आप ही कुहाड़ा मार रहे हां। जदों गुरु नानक देव जी दा प्रकाश होया ता मुगल राज दा समा सी, हिंदी जनता कमजोर ते निटार हो चुकी सी। महाराज जी ने इस कौम घातक वातावरण नूं पाप कीता ते बाणी विच फरमाया, घर घर मियां सब ना जियां बोली अवर तुम्हारी। ए हिंदी जनता नूं हलूणा सी कि तुसी अपना धर्म ईमान छड के मलेच्छां दियां मर्यादा अपना के घर घर मियां बने हुए हो ते अपनी बोली भी त्याग दिती है। सो गुरु प्यारियो, अपना फर्ज पछाणो, केवल अपना घर ही नहीं बल्कि अपने होर सजना मित्रां नूं भी इह सुनेहा दे के गुरु दियां खुशियां प्राप्त करो ते पंजाबी बोलन ते

एक ताल दो ताल हूं तीन ताल श्रवण कर लो नहीं जी दो ताल हो गया हूं तीन ताल जो कब कीनो सो भल मान्यो इस मत साधु ते पाई।

जितने माई भाई बैठे हो सारे प्यार नाल रसना पवित्र करया करो। पोथियां सामने रखण दा एहो एक फायदा है, इंसान चंगी तरह बोल सकदा है। इसलिए सारे प्यार नाल करीबन सारी संगत ही पोथियां रखदी है, फिर पढ़दे क्यों नहीं। पढ़ो सारे, कोई रसना खाली ना रवे। आओ साहेब पंचम पातशाह जी दियां कैसियां ए प्यारियां तुकां ने, पढ़ो सारे।

सारे जाने ओदे चरणा दे नाल ध्यान लाइए, ध्यान नू जोड़िए ते सरबत दा भला मंगिए। ते पातशाह फरमान करदे हन।

जिन्ना चिर यह परिपूर्ण परमात्मा अकाल पुरख के चरणों नाल जुड़िया है, मेरा खालसा यह मेरा ही रूप है। पर जदों के भरमां विच वहमां विच पै गया, गुगे जठेरे मनन लग पिया, मड़ी मसाणी मनन

0: DM Music पेश कर देने शब्द गुरबाणी गुरु रामदास राखो सरनाई
1: गुरु रामदास राखो सरनाई
0: भाई किशन पाल सिंह जी दी रस्पी।

गौड़ी चेती, शब्द भी गौड़ी चेती श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच उसी राग विच ए शब्द उचारिया है भगत जी ने, उपर सिरलेख है गौड़ी चेती भगत कबीर जी दा।

इना विकारां तो किस तरह बचा मैनू नहीं पता। मोको बाहां दे बीटला जिस तरह

उस हरी ने बाकी इंसानां नूं भी पैदा कीता। तुहाडे विच भी हरी, उन्हां विच भी हरी, फिर क्यों जुलम करदे? ये उपदेश सुनिया उन आदमखोरां ने, नामदेव दे चरणां ते मत्था टेकिया और अगे तो तौबा कीती कि असी हुण ये पैड़ा काम नहीं करांगे।

पर मैनू ते राम दे बराबर ही सोना चाहिए। जे दे सकदे हो तां जरूर दे। सेठ हंकार विच हसिया, तकड़ी मंगाई, तकड़ी दे एक पासे वो पत्ता पिया तुलसी दा जिहदे उत्ते राम लिखे, ते सेठ ने हसदिया होया

आज के उस जगह आए अर्जुन को हार के और सामने पहाड़ से शिवजी भगवान छोटे दे रूप में जिसनों हिंदी में सांड कहते हैं रूप में भजे आए तो वो जड़ा पहाड़ से वो

देव बदलावन देव मैं ते इक रमैया दा नाम जपदा ते ओदे बदले सारे देवी देवते छड़ दिते ने। इस करके ऐ भाई जिस अकाल पुरख ने

कमाल दियां गल्लां की कमाल दे बचन कहे कथा कीर्तन मन न लावे संत सिख को बुरा अलावे निंदा जुआ हिरे जो माल जो पंक्तियां तुसी सुनिया कई अजकल लाटरियां पाउंदे ने ए भी जुआ है आखिया निंदा जुआ हिरे जो माल महा दुखावे तिस को काल आ देख लो नाल नाल मन नूं तोलियो भाई किथे घट हां किथे पूरे हां पूरे होना है बाबा गुरु गोबिंद सिंह जी दी सोजी नूं धारण करना एक होर बड़ी कमाल दी गल कही जी सिख एक होर काम करे

ग्रंथ ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आखो सतनाम कहंदे सिख एक होर सुभा रखे वो केड़ा जी दूहू ग्रंथ में बाणी जोई दसम ग्रंथ ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी नू की करे जी गौर करे जी।

तीन चीजा एको जी खंड आटा ते घ्यो तीन चीजा एको जी इनू त्रिपावल की दे कहते हैं।

गलत गलत फहमी है। फिर महाराज जी क्यों करिए, कैसे क्यों करिए? तो कहेंगे हम गुरु की मत तू लेह ए आने। साथ तुम गौर न सुनो, इसे शब्द महाराज जी ने वर्त्या है ए आने। तो ए आने शब्द जरा निके निके बच्चे बैठे ने उन्होंने वर्ते। सुखमी साहब जो महाराज जी ने उचारी सी, तो सुखमी साहब जो लफज इयाने जरा उन्होंने निके जे न्याणिया जो पांच सात साल की उम्र में सी ये शब्द उन्होंने लिखा से। उन्होंने बेचारे भोले पालन के अभी समझ नहीं सी आने। तो सियाने फिर इयाने कौन हैं? तो इयाने वो हैं जिन्होंने पास सियाणक नहीं है पर उन्होंने वहन है सियाणक। ये जो ग्रोन न्याणे हैं ना उन्होंने आता है ग्रोन न्याणे। जो ग्रो हो गए हैं लेकिन हम हाले न्याणे ही अते मनवे भी नहीं हम कि असि हाले न्याणे हैं। वो तो कोई कोई गुरसिख अजिहा होंदा है जो आखे अंबार तू गुरपिता है जो मत समझाए। तू गुरु पिता है अभी अते असि बालक हैं हाले। लेकिन कौन कौन प्यार है कि अभी बालक हैं? जब इंसान कहता मैं तुम्हें बच्चा समझ दो, मैंने न्याणा समझ दो, मेरे तौले आ गए हैं तो मैंने किसी समझाने की कोशिश कर दो। जिस तरह के तौले आगे नाल अकल आती है वह तो कुछ संबंध ही नहीं उसके नाल। तो साथ संगत जी हूं तक आप जी ने यह सुनिया है गुरु बाबा जी का सुनेहा कि अपनी सारी मत अपनी सारी सियाणत क्योंकि साढ़े पास नहीं है छड़ दो। तो कहते हैं गुरु की मत को ले आने आने गुरु की मत लै क्योंकि भगत बिना बहुत डूबे सियाने बहुत बड़े बड़े सियाने जोड़े हैं वह गुरु की मत तो बिना भगती नहीं आती। बिना भगती तो बहुत व्डे व्डे सियाने जो हैं वो अपनी सियाणप के डुब जाते हैं अपनी सियाणप के डुब जाते हैं। इस करके प्रेम नाल आओ इस पंक्ति लगाओ उपरंत।

गुरु जी शिक्षा की कहती है मन की ज्योत स्वरूप है, तू वाहिगुरु जी की अंश है, तू वाहिगुरु जी की ज्योत का ही स्वरूप है, उसको अलग नहीं है, तू परमात्मा का ही अक्ष है, तू परमात्मा का ही रूप है, पर तू परम दे विच पिया होया है। इस परम नू दूर करके अपनी असलियत नू लभण दी कोशिश करके तू कौन है, ऐ गुरु जी मत है, गुरु जी मत है कि तेनू ये पता नहीं कि तू कौन है। तू है वाहिगुरु का रूप, वाहिगुरु की अंश और वाहिगुरु की तमाम खूबियां शक्तियां वो तेरे अंदर हैं, वाहिगुरु जी की तमाम अकल इंटेलिजेंस वो तेरे अपने अंदर है, वाहिगुरु के तमाम गुण तेरे अपने अंदर हैं, पर तू अपने आप में कुछ होर समझी बैठा है, जो समझी बैठा है कि ओ नहीं है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, अपना कहने मूल पहचान, अपनी ओरिजिनैलिटी पहचान, अपनी रूप में पहचान कि तू किसका है, कितों आया है, किस दे नाल तू संबंध रखना है। कहते अपने जीवन दे विच ओ लभण की कोशिश कर, अगर तू ओ नहीं लभिया। हुण पंक्ति ध्यान नाल सुने, मूल ना बूझे अपना दे पशुआ से तोर दिए। कहते जिन्हां ने अपना मूल नहीं लभिया, अपनी ओरिजिनैलिटी नहीं लगी कि उन्हों का आगाज कितों होया, कहते हैं वो पशु हैं अते तोर गवार हैं। मूल न बूझे अपना से पशुआ से तोर जियो, ऐ है गुरु की मत। तो पहली जी मैं दस चुका हाँ, हम किसी आप ही फर्क देख लो कि गुरु की मत जे की है और बाहरली संसारी मत जे की है। जड़ी मत है कि अपने आप नू पछाणना है, आप पछाणो तां कह जाणो। गुरु तेग बहादुर जी ने भी आख्या है ना, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनवासी सदा लेपा तो ही संग समाई, बहुत मत जो बात बस है मुकर माहे जैसे खाई, कैसे ही हर पसे निरंतर कट ही खोजो पाई, बाहर भीतर एको जानो ए गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने। अपने आप नू चीनन तो बिना, अपने आप नू पछानन तो बिना, अपने आप नू लभन तो बिना मिटे ना परम की साई। ए परम की त्रोह जिहड़ी है मिटनी है, तुसीं परम की ही रहना भाव हो कुछ होर अते समझी अपने आप नू कुछ होर जांदे हो, उस तों वड्डी त्रैजडी की हो सकती है। इस तो वड्डी ट्रैजडी अते इस तो वड्डी ना समझी, इस तो वड्डी बेअकली की हो सकती है कि मैं होवां कुछ होर अते अपने आप नू समझी कुछ होर जावां। इसमें भी मत वाला आख्या जा सकता है। गुरु जी महाराज कहिंदे हन पहला यह तो फाइंड कर लो कि तुसीं हो कौन, उस तो बाद फिर तुहानू मत वाले कहा जा सकता है। उस तो पहला तुहानू मत वाले नहीं कहा जा सकता कि तुहाडे पास मत कोई नहीं। मन तू ज्योत स्वरूप, अपना मूल पछाण। कहते अपना मूल पछाण, ऐ हम नुक्ते मैं आप जी के सामने रख रहा हाँ कि गुरु की टीचिंग दे विच की कुछ आंदा है। गुरु की टीचिंग दे विच ए आंदा, एक होर बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आंदा है गुरु की टीचिंग दे विच। कोई स्कूल, कोई माँ बाप, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज वो बिल्कुल नहीं सिखाए। ओ की है गुरु महाराज की टीचिंग के विच आंदा है कि मरना याद रखो, मरना याद रखो। तेरे मां बाप सिखाल दे हन ये गल ईमानदारी के नाल रखना। मेरे माता पिता ने तो मैंने कदे नहीं सिखाया कि मरना याद रखा था। मैं तो सच आप जी के सामने दसता, आप जी अपने मुतलक जानते हो, कदे किसी ने नहीं दसिया कि भी मरना याद रखी का होंगे। हाँ घर च कोई मरण की गल करे तो यह जरूर सुनीता सी कि मोहरों कहते सुख बोलो, सुचा जी की गल करो, मरण की गल ना करो सुख बोलो, सुख की गल करो, चुप बचन बोलो।
महाराज जी बाबा जी थां थां ते कहंदे हन मरना याद रखो, वृद्धा मंडप माल न लाए, अपना चित मन इन्हां मंडपां नाल उस दुनियादारी दे माल नाल ना लगा। तो की कर मर्द सतानी चित कर, मर्द सतानी, सतानी दा पाप बहुत शक्तिशाली, मर्द माने मृत्यु, मृत्यु जो कि बहुत ही शक्तिशाली है, उन चित कर, उन याद दे विच रख, चित दे विच रख। गुरु महाराज जी बाणी च आखदे हन कि तृष्णा वड्डा रोग लगा, साथ संगत ध्यान अपना फोकस करके रखो, क्योंकि मैं कहना आप जी कीर्तन सुनने के बाद घर जाओ तो जाकर गलबात करो, क्योंकि सुन के आए हाँ फिर उसमें बैठ के विचारो, उसका कोई नोट भी लाओ, ताकि ना दसा दिनों के बीच असं कुछ अचीव करना। बाबा जी बाणी चाहते हैं कि कितना वड्डा रोग लगा, मरण मनोविकार, मरना मनोविकार दिता, खाना पीना हसना सौना विसर गया है, मरना कहते उसने मरना बिल्कुल विसर गया, मरना बिल्कुल विसर गया, उसने मरना भी कहते मरना याद रखो। गुरु बाबा जी अपनी बाणी के आखते हैं मौत में याद रखो, कहते हैं मत्ती मरण विसार है, एक दुनियावी वस्तुओं दे विच मत्ती मैंने मस्त होई हुई, इस जीव जिंदड़ी ने इस मत ने की कीता है, मरना मनोविसार है, मत्ती मरण विसार है, खुशी कीती दिन चार, चार एक दिन की खुशी कीती, इसने बिल्कुल ही भुला दिता कि आ जिहड़ा मेरा जीवन है ये एक बुलबुले तो ज्यादा वध के अहमियत नहीं रखता। जैसे गलते बुदा उपजे दिन से नीत, जब रचना कैसे रची कौ नानक संगीत, असि एक पानी देते जो बुलबुला होंदा है उस तो वध के कुछ नहीं है। कई बंदे कह देंगे हम यू डोंट नो मी, हम कई बंदे ये गल कह रहे हैं कि तुहानू मेरा पता नहीं है, यू डोंट नो मी। महाराज जी कहते हैं हाँ हाँ सानू तुहाडा पता है, सानू पता है तुहाडा कि तुसी कौन हो, एक पानी के बुलबुले तो वध के कुछ नहीं है, कई जानते कि यू डोंट नो, असं कह दें कि यू डोंट नो। महाराज जी कहते हाँ सानू पता है तुसी कौन हो, दुक्का अस्त रक्त प्रेते चाम इस उपर में रखो गुमान, हड्डियां लहू नाड़ियां पिंजरा मिर्च आदि यह गंदगी का एक फैला है, इस उत्ते मान करते उत्ते कहते मैं तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हाँ, वो कहते सू पता है तुम कौन हो, बाकी तुम कहते कि तू पता नहीं कि मैं कौन हाँ, वो कहते पता है, जन्म जन्म की इस मन को मन लग गई, अंदर खुदा मैल ही मैल है और कुछ नहीं, मैल ही मैल। अभी कह दें कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हाँ, वो कहते पता है कौन हो, सबको भरिया फूक, हमने भी फूक न सारे भरे पे, वी नो यू। बाबा जी कहते मैं नहीं कह रहा था, गुरु बाबा जी कहते असं एग्जैक्टली जानते हाँ कि तुम कौन हो, हमें भी फूक के नाल भरे पे, हड्डियां बिस्ता मास लहू नाड़िया का एक पिंजरा हो, पिंजरे का इतना भी परिभाषा नहीं है, क्या परिभाषा इस पांडे का, इतना को लागे थनका, इतना को थनका लगे तो ये सुख सकता है, मुड़ के द्वारा ये जुड़ता नहीं। इस करके मौत में याद रखो, मौत में याद रखोगे तो तुहाडी अटैचमेंट जो है अपने आप नाल, अपने तन नाल, अपने बाकी तमाम चीजों के नाल, टुटन का तोड़न का जीवन वैराग पैदा करन का एक ही साधन है कि मौत में याद रखो, जो मौत में याद रखेगा उसे भी ही जिंदगी दे फर्दर सवाल आएंगे कि मौत तो बाद की है, फिर मैं ही बनागा, अदरवाइज एक क्वेश्चन पैदा नहीं होता। तो गुरु की टीचिंग के दूसरा पॉइंट यह आता है कि मौत में याद रखो, हम मैंने दसो ये मत कितने मिलती है, जो मिलती है तो बस कोई यूनिवर्सिटी लॉ के कोर्स मेडिसिन के कोर्स के होर किसी कोर्स के सिखाते हैं कि मरना भी याद रखो, बिल्कुल
मानते हैं गुरु की मत, जो असेंशियल चीजा गुरु की मत विच सिखा लिया जांदिया हन, ओ दुनिया की किसी भी होर मत दे दायरे दे विच आंदिया ही नहीं। होर बहुत कुछ है गुरु महाराज सिखा दें, सादा रहो, सादे रहो। ये कौन सिखाता है कि सादे रहो? साड़िया लाइफ के अनुभव सोफिस्टिकेटेड हैं, बड़ी कॉम्प्लीकेटेड हैं, बड़ी लग्जरियस हैं, इसका जो एक्सपेंसिव भी हैं, एक्सपेंसिव होने करके स्ट्रेसफुल भी हैं, बहुत सारी एंग्जाइटी का कारण बन रही हैं। और महाराज जी कहते सारे का सारा अवॉइड किया जा सकता है जस्ट बाय लिविंग सिंपल जीवन की। हम उसकी मिसाल सुनो, कबीर साहब का श्लोक है सिंपलिसिटी से, ये कहते कबीर खूब खाना खिचड़ी या मैं अमृत लोन, कहते मेरे लिए खिचड़ी ही जरा है वो बड़ा खूब स्वादला खाना है, जेदे विच सिर्फ लून ही पाया है तो अमृत वर्गा उसका स्वाद है ना, तो बनाने में चिर लगे ना, उस दे नाल फैट प्रॉब्लम होवे ना, उस दे नाल कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम होवे ते ना ही उस दे नाल ग्रोसरी का बिल वधे। कहिंदे खूब खाना खिचड़ी जां मैं अमृत लोन, ना ही वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, जेरा रोटी कार ने गला कटावे कौन, जेरा रोटी कहिंदे मास वाली रोटी ने चला मुर्दार ले आओ, उन्हें खिलो, उन्हें बनाओ, घर का वातावरण जो है वो मैला करो, फिर जिन्होंने आज खावे वो कदे सामने नहीं खाएंगे। कुदरत के ऐसा नियम नहीं है, जो कर्म करोगे उसका फल उसे तुरंत ही भुगतना पाएगा। क्योंकि हीरा रोटी कार ने स्वाद के बदले मैं किसी जीव का लिया के गला कट दिना हाँ तो उस कर्म का कोई नतीजा नहीं निकलना, उस कर्म का भी तो नतीजा निकलना है। कहते कौन निकले जाए स्वाद के बदले अपना गला कटवावे, कबीर साहब का श्लोक है हेरा रोटी कार में गला कटावे कौन, कहते मेरी ऐस इन्नी स्वाद की गल बदले मास, हेरा रोटी का मतलब होंगे मास वाली रोटी, कहते मास वाली रोटी के बदले इन्नी गल बदले कौन अपना सियाना बंदा गला कटा है। कहते मेरे लिए सादी सिंपल खिचड़ी ही अमृत वर्गी है, इतों भाव है सादा खाओ, सादा जीवन जियो, यह है गुरमत की सिक्ख्या, गुरमत की टीचिंग। फिर फरीद साहब आणी चाहते हैं फरीदा बुरे का भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, जिहड़ा पहले ही बुरा है, जिहड़ा पहले ही बुरा है उसनू होर बुरा बनाना है, उसका बुरा करके तो तुसीं होर बुरा बना दो। बुरा होने के नाल वो अपनी आत्मा का नुकसान कर रहा, अपने जीवन का नुकसान कर रहा, अपनी मत का नुकसान कर रहा, अपने जीवन को तबाह कर रहा बुरा होने करके। होर की बुरा उसका करना है, होर उसका बुरा की करना है, अगर होर तुम उसका बुरा कर लग पे तो फिर उस नाल भी ज्यादा बुरे हो गए। फिर बुरे का भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, हुण ए बहुत मुश्किल गल है गुस्सा मन ना हंडाए, कौन नहीं चाहता कि मैंने गुस्सा ना आए, पर गुस्सा सानू सदमा नहीं आ जाता। यह है गुरमत की तालीम, गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोग ना लगे पल्ले सब कुछ पाए। क्योंकि अगर तू इनिया की गल कर ले तो तू देही दे अनेक रोगों तो बच जाएगा, क्योंकि बहुत सारे रोग सिर्फ पैदा ही गुस्से करके होंगे, पैदा ही इमोशनल प्रॉब्लम करके होंगे। तो साहब सिंह जी अब आपके सामने मैं दो किस्म की मत अलग अलग करके रखी है, मन की मत जी सू इधरों उधरों मिली है असं उसमें मत समझी बैठे हैं, अपने आप में अकल वाले आके मत वाले समझी बैठे हैं, कदे सवाल नहीं किया, क्वेश्चन नहीं किया, शक नहीं की, कदे सोचा नहीं कि मत कितों लई भी है, वैसे ही कितों आ गई है, नहीं मत सानू आई नहीं असं वड्डे जरूर हो गए हैं, मत सानू आई नहीं असी मत वाले होने का भरम जरूर कर लग पे हैं, मत सिर्फ इको ही ढंग दे नाल आंदी है, गुरु की मत तू ले आने भगत बिना मौजूद देता। जितनी देर तक गुरु तो असी मत नहीं लेंगे फिर वो इंसान अपनी जिंदगी का हर बोल
हर कर्म हर सोच ओ सोचे ओ करे ओ बोले जो गुरु की मत के नाल बिल्कुल मिलती हो, जो गुरु की मत के जितों हो गए तो वह कह सके आ मैं जो बोल रहा ये मेरे बाबा जी के वचन हैं उन्होंने जो बोल रहा है मेरे अपने नहीं हैं। मैं मस्कट एक दफा कीर्तन से गया तो कीर्तन के बाद एक सज्जन कह लगे भाई साहब मैं आप जी के नाल एग्री नहीं करता डिसएग्री करता। वैसे भी जितों तक मैंने याद है कीर्तन के दौरान मैं एक लफज भी अपने को नहीं किया, जो कुछ अपने लफ्जों किया उस गुरबाणी दंक्तियों के नाल कोई पहला मेरे ध्यान गुरबाणी की पंक्ति होंगी फिर मैं कोई गल आखना है तो सारी तो गुरबाणी ही बोली गई है तो जो आप जी डिस एग्री करते हो तो बाणी नाल करते मेरे नाल नहीं करते क्योंकि मेरे पास तो मत है ही नहीं, मेरे पास अपनी कोई सियाणत नहीं है, कोई मत नहीं है, मेरा अपना कोई ओपिनियन नहीं है, जो भी आखता हाँ वो गुरु बाबा जी की पवित्र पावन बाणी के विचों आखदा हाँ तो वह गुरु बाबा जी की मत है। आओ अपने जीवन अपने मत को त्यागिए, गुरु की मत को लियाइए, गुरु की मत को लियाण के नाल जीवन स्वाद आता है, अपनी मत के नाल जीवन के फिक्कापन आता है। वो मैं पंक्ति कह के समाप्त कर लगा हाँ। कहते हैं लाले गोले मत खरी, जिहड़ा गुरु का लाला गोला दास है सेवक है उसकी मत से है सोने वर्गी खरी, क्योंकि गुरु की मत नीची नीची का नहीं होता बहुत अच्छी, क्योंकि उसके पास गुरु की बहुत अच्छी मत है। ऑन द कॉन्ट्रेरी लाले गोले मत खरी गुरु की मत नीची साची सुरत सुहावनी, उस गुरु के दास की सुरती जी है बहुत सुहावनी है बहुत टिकी हुई होगी होगी मनमुख मत फीकी, तो जरा मनमुख है उसकी मत फिकी होगी, जिसे मत फिकी है उसे सारा ही जीवन फिका होगा, जीवन का हर एस्पेक्ट जो है वो फिका होगा, देश लक्ष होगा देश ज्यादा होगा। उनकी किस्मत लक्ष्मी हाले मेरी पूरी जो है वो जब लक्ष्मी थकावट भी नहीं उतरी और अगले सूचना के आप जी की सेवा जो है वो होर भी गुरु बाबा जी अपनी आशीर्वाद दें तो उस दे नाल की जा सकेगी। समय से रोजाना शाम के दीवान जाना इसे तरह इसे विचार भी जो है लड़ी चलती रहेगी, तो असं इन्ह दसा दिनों के बहुत सारा गुरु बाबा जी की मत का जो खजाना है वह एकत्र करना है। आप अपने नोट्स बनाया करो जाके आप सिर्फ इस दूसरे के नाल इस विचार की सांझ पाया करो ताकि असं कट्ठे रल के ग्रो हो सकी। आस्ट्रेलिया के दस दिन कीर्तन जो लगे हैं ये साड़ी एक किस्म की इनवैसटमेंट हो गए कि इन्होंने दसा दिनों के असं कुछ प्राप्त किया है। यही कुछ समा प्यार नाल संगति मगाओ उपरंत समाप्त।

अकाल पुरख के यज्ञ अरदास कर रहे मंगदे पियन शुभ कर्म अपने वास्ते में आप तो निरंकारी ज्योत आप तो निरंकार का ही स्वरूप दास अकाल पुरख को किस वास्ते मंग रहे हैं साढ़े वास्ते मंग रहे साढ़े वास्ते से महान वड्डी दास शुभ कर्मा देह शिवावर मुहे से है शुभ कर्मन से कम हूं न करो शुभ कर्मा शुभ कर्म ही सबको बची है बाबा जी बची करते सब परमार्थ तो सदा ही पवित्र है निर्मल परमार्थ सदा ही पवित्र और साडा विहार ये पवित्र होना चाहिए विहार निर्मल होना चाहिए परमार्थ का सदा ही निर्मल जिसका विहार पवित्र है विहार सच्चा से सच्चा हो गया उसका जीवन विहार हो रहा है दिखावा हो रहा है वो फिर असली जीवन में बनावटी जीवन तो शुभ कर्मों की विशेषता है सबसे ज्यादा शुभ कर्मों वाली दुनिया में कामयाबी दुनिया भी सत्कार कर दी है जिसे कोई शुभ कर्म तो भाई फल भी दर्शा जी असं कलयुगी जीवां दे वास्ते अकाल पुरख दे के अरदास कर रहे हैं दे शिवावर मोहे के है ते ये भी कहते हैं कि कलयुगी दा सतगुरु जी ने शिवजी महाराज के अरदास की सबने शिव नाम जो है वो अकाल पुरख जिन्हों लोग शिवजी कहते हैं असली उसका नाम महादेव है सदगुरु जी ने आप फरमाया है महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का कीनत न भेद महादेव नु लोग शिव कहते वो इस वास्ते जेड़ा सिमरन करने वाला हो रब की बंदगी करने वाला लोग कहते भई ये तो रब रूप ही क्यों रब नाल जुड़े इसे तरह महादेव नु शिव जी किया जाता है पर असल में शिव नाम अकाल पुरख उस अकाल पुरख के अगे कलगीधर दशमेश पिता जी ने अरदास की वर मंगिया दे शिवा वर मुड़े के है कर्मन से कम शुभ कर्मा की दात साढ़े बार तो जिन्होंने शुभ कर्मा की दात प्राप्त कर ली उन्होंने गुरु दिया मेहर उन्होंने दुनिया जय जयकार अज मेरे कलगीधर सच्चे पातशाह जी साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी बाबा फतेह सिंह जिन्हों फतेह हासिल हो धर्म की तज खड़ी कर दी आखो श्री वाह धर्म का बोल सदा वास्ते चढ़दिया कला फतेह प्राप्त नाशवंत पदार्थों प्यार नहीं किया अमर वस्तु जो सी धर्म उसनों अपना है
ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਰਮ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਹੈ ਭਾਈ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਫਲ ਧਰਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨਾਸ਼ਵਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਮਝਿਆ ਇਸਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨ ਸੁਣਿਆ ਇਸਨੇ ਤੋਂ ਦਿਨ ਬਿਨ ਸੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਧਰਮ ਸੰਗੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਹਜ਼ੂਰ ਪ੍ਰਮਾਨੰਦਨ ਸਗਲ ਧਰਮ ਮੇਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਆਓ ਪਿਆਰੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਸਤੀਆਂ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਜੁੜੇ ਆਓ ਜੋ ਦਾਸ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੰਗੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗੀਏ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਜਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਕਿਹੜੀ ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ

देवी वर बन गए। हे निरंकार, मेरा खालसा सना वास्ते कर दिया कला कर, मौत नू वेख के डरे नहीं, निडर हो।

सिकंदर लोधी दे दरबार विच पहुंचे। बादशाह सिंघासन ते बैठा है, दरबारी बैठे ने। नाशवान बादशाह समझ के कबीर साहब ने सलाम नहीं कीती। सिकंदर लोधी नूं होर क्रोध चढ़ गया। एक ता निंदका ने पहला कन भरे सन। बादशाह कहंदा कबीर तू मुसलमान हो के राम दा नाम जपना, फिर मैं बादशाह तू मैनू सलाम नहीं कीती। ते कबीर साहब फिर की कहंदे ने, बादशाह दे मस्तक वल तकिया ते हंकार दिसिया ते नाले इउं कहिया,

तू मेरे हरी दी समानता है नहीं कि मैं तेनू सलाम करा। ओदी बादशाही जुगो जुगो अटल।

बादशाह नु क्रोध चढ़ गया, सिपाहियां नु हुक्म दिता एदे हाथ पैर बन के इनु गंगा दे विच डोब के मार दियो, मैं देखना इस दा राम इस नु किस तरह बचांदा है। कबीर साहब दे हथां पैरां विच बेड़ियां पा के गंगा वाल सिपाही लै के तुर पए ने।

छिपाई हाली वापस नहीं पहुंची। कबीर साहब पहले ही घर पहुंच गए। कबीर साहब दे श्रद्धालुआ ने बड़ी खुशी मनाई। सारे शहर विच जलूस कढ़िया जा रहे है। कबीर जी कबीर दे राम ने रखिया कीती। बादशाह नूं पता लगा है हाली कबीर मरिया नहीं। फिर सिपाही भेजे ने सिपाहियां ने फड़ लिया। बादशाह कहिंदा है ठीक है जे पानी विच नहीं मरिया इनू अग विच साड़ के मार दे। एक बड़ा वड्डा लकड़ां दा ढेर कठा कीता। कबीर साहब नूं लकड़ां दे उत्ते बठा के उत्ते भी लकड़ां चिणन लग पए। चार छफेरे नंगियां तलवारां दा पहर है। ए समझदे ने कि कबीर कोई जादूगर है। कबीर साहब दे प्रेमी रोण लग पए ने पर कबीर साहब अडोल लकड़ां ते बैठे होए अपने श्रद्धालुओं नूं की समझांदे ने।

आगे आप ही हवा। जे अकाल पुरख ने मेनू साड़ना है ते बचा कोई नहीं सकता है। जे उन्हें मेरी रखिया करनी ते फिर मेनू कोई साड़ नहीं सकता है।

आबे ही यात मिल जाए ना ते तू कदे नहीं मरेगा, अमर हो जाएगा। हुन आबे ही यात दी पाल करन ले चल पिया, पर प्यारी सात संगत दुनिया दे सुख दुनिया दे राज भाग मिल जांदे हन, कोई वड़ी गल नहीं है। पर परमेश्वर दे नाम दा आबे ही यात मिलना ए उदी कृपा होवे तां मिल सकदा। आबे हयात तक पहुंच भी गया, अमृत तक पहुंच गया, भुख भर के पीण लगा ते परमेश्वर ने एक ऐसी रचना रची कि एक इल आके उथे आके बह गई, कहन लगी आ की कर रहे, आवेख मेरी की दशा हुई हुई है, किवें मैनू कोड़ पिया होया, ना मेरी मौत आउंदी है ना मैं सुख दा साह लै सकदी हां। जे तू भी अमृत पी लिया तो तेरा भी यही हाल होवेगा। बुक भर के पीण ही लगा सी कि ओ बुक डोल के आ गया, क्योंकि नाम परमेश्वर दी कृपा नाल ही प्राप्त हो सकदा। किसे ने बड़े प्यार नाल लिखया है, शाह सिकंदर ढूंढे आबे हयात नू, फिरदा विच पहाड़ा दिन ते रात नू, कदी ना पीता प्याला अपने दस्त पर, वजीदा कौन साई नू आखे इंज नहीं ते इंज कर। ते हजूर दी बाणी भी बख्शिश कर दी है भाई, ते परमेश्वर दी बंदगी ते वड्या भागा नाल नसीब होंदी है। जिस नू तू प्रभ वल तिस क्या मोह शंदगी, जिस नू तेरी मेहर सो तेरी बंदगी। सिकंदर पातशाह आके बीमार पै गया, बड़े बड़े हकीम डॉक्टर आ रहे हन बचाउन दा जतन कर रहे हन, आख्या जितनी मैं दौलत कठी कीती है बेशक सारी लग जावे पर मैनू कुछ स्वास मिल जान, पर मिले नहीं। जदों सारिया ने जवाब दे दिता तो सिकंदर ने एक आखरी ख्वाहिश प्रगट कीती, आख्या जदों मेरी अर्थी जा रही होवे मेरे हाथ पैर नंगे रखना। मैं दुनिया मैं आप तो नहीं समझ सकिया, पर दुनिया समझ जाए कि इतना चक्रवर्ती पातशाह जा रहा है पर नाल कुछ भी नहीं ले जा सके, नाल केड़ी वस्तु जाएगी, नाल जाएगा भाई परमेश्वर दा नाम। ऐसे लई गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह बख्शिश करदे हन जगत में।

आख्या क्यों महल माड़िया दे मगर लग्या, ये कोई नाल नहीं ले जा सकिया। बड़ी गल है जदों तू पंज भूतक शरीर त्यागेगा ता कोई दो गज कपड़ा तेरे ते पा देवेगा, बस इस तो बाद होर कुछ नहीं। क्योंकि कौडी कौडी जोड़े जोड़े लाख करोड़, चलती बार न कछ मिलियो ले लंगोटी तोड़। अगे शाहूकार जदों लंगोटी बनते सन ना ते लक विच सोने दी जंजीर पा के रखते सन, ते कबीर जी वेख रहे सन एक बड़ा सेठ जदों मरिया इसका शरीर अगन पेट करन लगे ते घर वालिया ने वो लंगोटी भी तोड़ ली। ए सोने दी चैनी भाई किधर ले चलिया, इसलिए आख्या तेरे नाल कुछ नहीं जाना, ये सब इथे रह जाएगा, नाम दा धन तेरे नाल जावेगा। कबीर कोठे मंडप हेत कर काहे मरे सवार, कारज साढ़े तीन हथ कनी तो पौने चार, बस इतनी कोई तेरी होगा।

अपना मन रखेगा तो फिर पदार्थों में पाई कोई कीड़ा ही आके बनेगा। अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जो परे, ऐसी चिंता में जो मरे, सरप जून वल वल होता है। इसलिए इतना को इकट्ठा कर जितनी तेरी बिरती ना बिगड़े, तेरा नितनेम दा समा एवें ना चला जावे, क्योंकि कुछ नाल भी ले जाना है तू ते नाल परमेश्वर दा नाम जाना। इसलिए असी 24,000 श्वास रोज दे लैंदे हां, इना विच्चों श्वासा दा दसवंद जो 2.5 घंटे समा बनदा ओ असी गुरु दे लेखे, ए गुरु का कर्ज है साडे सिर ते, ए तां असी उतारना ही उतारना। आख्या जे इस तों वध समा कढेगा तां गुरु नानक दे बैंक विच ए समा तेरा जमा है, जदों मर्जी है भाई ए सहायता तू प्राप्त कर सकना। इसलिए इना श्वासा नू जप जप के भाई सफल करना। अगे पुछया जाना है कितने कु श्वास भाई जप जप के सफल कीते। आ बैंक विच्चों लोन लईदे ना उदा ब्याज देना पैंदा, ते असी भी श्वासा रूपी लोन लैके आए हां, ते श्वासा दा ब्याज देना ही पेगा, जे नहीं देवांगे तो फिर पकड़े जावांगे। फिर हजूर कहंदे न आपीने भोग भोग के होए बसमर पौर सिधाया, वड्डा होआ दुनीदार गल संगल घट चलाया। क्योंकि मनुख जितनिया भी सियाणपा करदा संसार विच आके परमेश्वर दे नाम तो बिना, जितनिया भी सियाणपा हन ए अपने गलां विच आप फाई पा लैंदा, फिर दुखी हुंदा। इसलिए हजूर कहंदे हन भाई जेती सियाणप कर्म हो किए तेते बंद परे, आपीने भोग भोग के होए बसमर पौर सिधाया, वड्डा होआ दुनीदार गल संगल घट चलाया। अगे करणी कीरत वाचिए बै लेखा कर समझाया, ठाउ न होवी पौंदी हुण सुनिए कह रवाया, मन अंधे जन्म गवाया। इसलिए भाई इस जन्म नू गुवाना नहीं, जप जप के जन्म नू सफल करना। ए साडी जन्मा दी सुती होई सुरत नू धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जगा रहे हन। ए मनुख तू जाग, जगत तुम्हें झूठी देखी प्रीत, जगत दियां प्रीतां झूठियां प्रीतां नी। एवें तैनू सारे कहंदे हन भाई कोई अपदा पवे मैं तेरे लई सब कुछ वार देवांगा, पर पता उदों ही लगदा जदों सारे आसरे टुट जांदे हन, इक परमेश्वर दा आसरा रह जांदा है। फिर जदों मनुख निम्रता दे नाल सच्चे दिलों अरदास करदा है, परमेश्वर दी प्रीत ए लोक परलोक सवार देंदी है।